सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चंद्र जी की जय, श्री अयोध्या राम जी लला जी की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री उमापति महादेव जी की जय, श्री रमापति रामचंद्र जी की जय, श्री वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आदाब, नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग श्रोताओं। आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। आज 21 अगस्त 2026 है। नई सुबह, नई उम्मीद और नए हौसले के साथ आइए इस खूबसूरत सुबह का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आज का दिन आपके लिए खुशियों, सुकून और कामयाबी से भरा हो। श्रोताओं, आप ये श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz और इसके अलावा आप हमें DTH के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी की आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, मैं हूँ अनिका रशीद फराश और आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के विशेष प्रसारण में।

श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर, और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओ, हमारे साथ बने रहिए।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालीदल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर, और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा की परंपरा में छड़ी मुबारक का विशेष स्थान है।

छड़ी मुबारक को भगवान शिव जी की पवित्र छड़ी माना जाता है और इसे भक्तों की यात्रा के लिए सुरक्षा और आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। पहलगाम मार्ग अमरनाथ यात्रा का पुराना और पारंपरिक मार्ग है। पहलगाम से चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी होते हुए ये मार्ग पवित्र गुफा तक पहुंचता है। इस वर्ष मौसम की खराब स्थिति और यात्रा मार्ग की मरम्मत के चलते 9 अगस्त से नियमित अमरनाथ यात्रा दोनों मार्गों पर स्थगित है, लेकिन छड़ी मुबारक की पारंपरिक यात्रा पहलगाम मार्ग से जारी रहेगी और 28 अगस्त को पवित्र गुफा में पहुंचकर अमरनाथ यात्रा 2026 के समापन को चिन्हित करेगी। जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण।

0: श्रोताओं, श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद आप समाचार सुनेंगे।
1: मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
2: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायबाई के साथ सुरेखा जोशी।
1: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न ₹200 वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
6: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार चार आठ समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगो रोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
7: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग टी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
8: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदले की राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only two stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today, BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur. National Testing Agency says Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students, rejects concerns of being expensive. US imposes fresh sanctions on Hezbollah, citing its ties to Iranian government. And in hockey, Indian women's team to take on Netherlands in the first match of second pool phase at FIH World Cup in Amstelveen today. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries of the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. More from our correspondent.
10: Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. The Prime Minister added that silos are not merely an organizational problem, but also a problem of mindset. He further urged officials to work with a spirit of belongingness, highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers. Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities, and young people to bring fresh perspectives in policy making. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level, citing examples of experiences of the COVID-19 pandemic and the West Asia crisis. He said that such coordination mechanisms should become a natural part of the government's work culture. Mr. Modi also called for effective use of artificial intelligence while ensuring human intervention and for exploring innovative ways of combining the capabilities of AI with human expertise. Prime Minister concluded by reiterating the need for a whole-of-government approach, greater coordination, innovative thinking, and collective ownership to address complex challenges and shape India's future with a long-term perspective. With Priya, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
9: Union Home Minister Amit Shah has criticized the Congress Working Committee's decision to sing only two stanzas of Vande Mataram instead of the full rendition. Talking to media, Mr. Shah said that the decision amounts to an open defiance of the law enacted by Parliament and is anti-national. Mr. Shah claimed that in 1937, the Congress had divided Vande Mataram into two parts for the sake of appeasement. He said that on the 150th anniversary of Vande Mataram, the central government corrected this historic mistake and gave the full song legal recognition. Mr. Shah alleged that under the leadership of Rahul Gandhi, the Congress is once again following the path of appeasement for vote bank politics.
11: I appeal to my fellow citizens to reflect upon the consequences of the past decision to permit the division of Vande Mataram into two parts. We have unfortunately witnessed the regrettable consequences of that decision. I therefore urge all citizens to stand united against any such course of action and to reject the politics of appeasement pursued by the Congress Party.
9: Union Home Minister Amit Shah arrived in Bagdogra yesterday evening on a three-day visit to West Bengal. He was received at the Bagdogra airport by Chief Minister Suvendu Adhikari, Darjeeling MP Raju Bista and Tourism Minister Shankar Ghosh, among others. More from our correspondent.
12: Union and Home Minister will take part in a series of programs Siliguri today. They will lay the foundation stones for several projects at the headquarters of the Sashastra Seema Bal or SSP. He is also scheduled to attend two meetings on the Siliguri corridor, popularly known as the Chicken Snake. In the afternoon, the Union Home Minister will inaugurate an exhibition on the Bharatiya Nai Sangeeta or BNS at Kawakhali Ground. Chief Minister Shubhendu Adhikari and other state ministers will accompany him. The exhibition will focus on creating awareness about the new criminal law and continue till 26th of this month. Mr. Shah is also scheduled to meet party leaders and workers this evening. Two review meetings on issues concerning the hills and internal security is scheduled for tomorrow. Shandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
13: India will host the 12th BRICS Communication Ministers Meeting in Pune today. The meeting will be chaired by Union Communications Minister Jyotiraditya Sindhya. It will bring together communications ministers and senior representatives from BRICS and member countries to deliberate on strengthening cooperation in information and communication technologies, ICTs, digital transformation, innovation and resilient digital infrastructure. The theme of the meeting is Innovate, Cooperate and Transform ICT for a Resilient Future. The event will provide a platform for BRICS member countries to exchange views on emerging technologies, digital public infrastructure, future networks, cybersecurity, capacity building and inclusive digital connectivity. The deliberations will also focus on advancing practical cooperation and sharing

0: मंडी ने आज उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी हिस्सों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में मौसमियात के महकमे ने आज आमतौर पर मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई की है। करेलम के कई साहिली इलाकों में आज ऊंची ऊंची लहरें उठने के तनाजुर में समंदर में उथल पुथल रहने का इम्कान है। समंदरी उलूम की खिदमात से मुतालिक कौमी सेंटर के मुताबिक तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुजा, एर्नाकुलम, मल्लापुरम, कोझिकोड और कासरगोड के साहिल के नजदीक समंदर में 1 से लेकर 1.5 मीटर ऊंचाई तक लहरें उठने की वार्निंग जारी की गई है। हॉकी में आज एम्स्टरडम में FIH आलमी कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मुकाबले में भारतीय खवातीन टीम नीदरलैंड्स का सामना करेगी। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। इससे कबल भारतीय टीम कल पूल डी के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ मैच बराबरी पर खत्म करने के बाद दूसरे दौर में पहुंची। इस मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। दोनों ही टीमें गोल का मौका बना पाईं लेकिन गोल करने में नाकाम रहीं। भारत ने दूसरे हाफ में इंग्लैंड के कई पेनल्टी कॉर्नर रोके। बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में BWF आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मर्द खवातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की डबल्स की भारतीय जोड़ी चीन के तीसरे दर्जे की जोड़ी का सामना करेगी। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ है फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की सुर्खी है, भारत जापान दिफाई ताउन बढ़ाएंगे, बहरी सलामती के मुआहदे पर दस्तखत। अखबार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमाया किया है कि वंदे मातरम पर कांग्रेस का फैसला मुल्क मुखालिफ और कानून की खुली खिलाफ वर्जी। अखबारात ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को भी अहमियत दी है कि हुकूमत लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच कायम करेगी। झारखंड में कामयाब उम्मीदवारों को राहत, इम्तिहानात मनसूख करने के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक, यह खबर इनकलाब में सफ़े अव्वल पर है। अखबारात ने मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम के बांग्लादेश के नए सदर मुंतखब होने की खबर को भी अहमियत दी है। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-क़ौमी खबरें इस तरह हैं, ट्रंप का ईरान के खिलाफ गैर मामूली और तबाहकुन माशी कार्रवाई का ऐलान।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम ने बंदिशें और रुकावटें दूर करके मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती नजरिया अख्तियार किए जाने पर जोर दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने की बजाय कौमी गीत के सिर्फ 2 अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। भारत आज पुणे में ब्रिक्स मुल्कों के मवासलात महकमे के वजीरों की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा, जबकि ब्रिक्स के सेहत महकमे के वजीरों की मीटिंग जयपुर में होगी। और हॉकी में आज एम्स्टरडम में FIH वर्ल्ड कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा, FM पहलगाम 100.1 MHz और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी की आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। श्रोताओं, जम्मू कश्मीर की धरती पर आस्था और परंपरा से जुड़ी कई ऐसी पवित्र यात्राएं हैं जो अपने अलग महत्व के लिए जानी जाती हैं। श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के बारे में जानकारी देने के बाद अब हम आपका ध्यान ले चलते हैं पुंछ की तरफ, जहाँ हर साल एक और महत्वपूर्ण यात्रा का आयोजन होता है, श्री बुड्ढा अमरनाथ जी यात्रा। पुंछ जिले के मंडी क्षेत्र में स्थित श्री बुड्ढा अमरनाथ जी का मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और पवित्र स्थल है। ये मंदिर पुंछ शहर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ मौजूद प्राकृतिक शिवलिंग सफेद पत्थर का बना हुआ है, जिसे भक्त भगवान शिव के रूप में पूजते हैं। हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त इस पवित्र स्थल पर पहुंचते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। श्री बुड्ढा अमरनाथ जी यात्रा की एक खास पहचान है छड़ी मुबारक। छड़ी मुबारक को पुंछ के दशनमी अखाड़ा से पूरे सम्मान और धार्मिक विधि के साथ मंडी में स्थित बुड्ढा अमरनाथ जी के मंदिर ले जाया जाता है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त और साधु शामिल होते हैं। रास्ते में चंदक जैसे स्थल पर भी यात्रा का विशेष पड़ाव होता है। यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि पुंछ के लोगों के बीच एकता, भाईचारे और मिलजुल कर रहने की भावना को भी दिखाती है। यात्रा के दौरान स्थानीय लोग भक्तों के लिए भोजन, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं का प्रबंध करते हैं। तो श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा की पवित्र गुफा से लेकर पुंछ बुड्ढा अमरनाथ जी तक जम्मू कश्मीर की धरती, भगवान शिव के प्रति लोगों की गहरी आस्था और यहाँ की पुरानी परंपराओं की एक सुंदर कहानी बयां करती हैं। बने रहिए हमारे साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में।

0: श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता एस तारिक पहलगाम से। एस तारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत शुक्रिया अनिका जी।
0: क्या कुछ अपडेट्स है छड़ी मुबारक के बारे में?
1: अभी तो 57 दिनों तक चलने वाली इस श्री अमरनाथ जी यात्रा के आखिरी दिन चल रहे हैं। आखिरी दो तीन चार दिन रह गए हैं, तो प्रिय श्रोताओं को मौसम के बारे भी सूचित कर दूं और इस यात्रा के बारे में भी। तो ये खासकर मैं जो आज का सेगमेंट है जो कल से शुरू होने वाला है, वो है अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में छड़ी मुबारक का सफर, जो कल सुबह से ही श्रीनगर में वो निकल पड़ेंगे। तो छड़ी मुबारक जो है नाग पंचमी के दिन तक, जिसके मुख्तलिफ प्रोग्राम श्रीनगर में हुए मुख्तलिफ मंदिरों में, तो वहाँ धार्मिक जो पूजा पाठ हुई है, तो उसी के साथ फिर कुछ वक्फे के बाद जो नया शेड्यूल जो है छड़ी मुबारक का, वो है कल 22 तारीख को, जिसकी जो छड़ी मुबारक की जो कस्टोडियन है श्री महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में कल 22 तारीख को छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंचा, जहां गौरी शंकर मंदिर में भूमि पूजन के

0: बाद रात का पड़ाव पहलगाम में ही होगा। तो उसके बाद 24 अगस्त को छड़ी मुबारक के जो काफिला है वो चंदनवाड़ी में रात गुजारेंगे। फिर 25 अगस्त को बिलतरतीब शेषनाग पहुंचेंगे। इसके दरमियान बहुत से पड़ाव आएंगे, जो दिन को उनको सामना होगा वो है नागा कोटी है, महागुन है, तो वहां पर भी वो पूजा करेंगे। और रात का जो उनका जो विश्राम होगा वो चंदर शेषनाग में होगा। फिर 26 और 27 तारीख को वो पंचतरणी पहुंचेंगे और रात का पड़ाव वही करेंगे। और वहां भी धार्मिक जो महामंत्रों का जो ज्ञान होगा वो वहां किया जाएगा। उसके साथ ही जो आखिरी दिन होगा 28 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन वो बिल्कुल सुबह पोफटे ही जो सूरज की पहली किरण निकलेगी उसी के साथ महामंत्रों के साथ वहां इबादत होगी, दुआएं होंगी पूरे विश्व के लिए, पूरे जहां के लिए। और उसी भजन जो बाकी चीजें होती है जितनी भी धार्मिक चीजें होती है वहां होने के बाद पूजा होगी, और पूजा के बाद दर्शन, वो दर्शन के बाद जो इस विशेष धार्मिक महामंत्रों के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का रिवायती समापन होगा। तो इस सिलसिले में कल भी और आज भी और परसों भी लगातार जिला अनंतनाग में जो प्रशासन है, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जो कि यात्रा अफसर पहलगाम भी है एक्सेस पहलगाम साइड के रूट का, डॉक्टर बिलाल महीदीन ने भी एक अपने ऑफिस में एक अहला सतही इजलास भी तलब किया है। तो उन्होंने वहां अमरनाथ जी यात्रा 2024 की छठी मुबारक के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया। इजलास में पुलिस सरबरा जो अनंतनाग के है उमोद अशोक नागपुर यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दीगर जो कमांडेंट है जेके एपी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी हेड है, तो नुनवन बेस कैंप चंदनवारी और शिशनाग और पंचतरनी स्टेशनों के कैंप डायरेक्टर्स या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग एसडीएम पहलगाम श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के नुमाइंदे थे वहां, और बहुत सारे डिपार्टमेंट जहां उनके साथ वार्तालाप होकर पूरे छठी मुबारक के इंतजाम का जायजा लिया गया, सिक्योरिटी का इंतजाम लिया गया। तो इस तरीके से कल एसएसपी अनंतनाग पहलगाम खुद जाके उन्होंने चंदनवारी तक का सफर किया और वहां उन्होंने सारे इंतजाम और सिक्योरिटी का खासकर जायजा लिया। तो हम और जो पूरे कश्मीर के लोग हैं, खासकर कश्मीरी पंडित मुस्लिम समुदाय, कल इस छठी मुबारक का बिल्कुल इस्तकबाल करेंगे। पहले तो जो छठी मुबारक है वो श्रीनगर से निकलकर पहले पांपोर पहुंचेगी, जहां पांपोर में एक मंदिर है वहां हल्का सा पूजा पाठ होगी, और उसके बाद अमंतीपोरा, फिर बिजब्यारा में भी जिस मंदिर में वो प्रवेश करेंगी उसे छोटा अमरनाथ कहते हैं, तो वहां से होके वो मार्तंड यानी सूर्य मंदिर मटन पहुंच जाएंगे, वहां पूजन होगी। उसके बाद पहलगाम, और पहलगाम में वो भी पूजन होगी और रात का वहां ठहराव होगा। तो इस तरीके से कल का जो दिन है वो इस अमरनाथ यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी
1: जी एस तारिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओं, ये थे हमारे पहलगाम से संवाददाता एस तारिक, और इन्होंने आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई छड़ी मुबारक के हवाले से। श्रोताओं, हमारे साथ बने रही श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। हमारे साथ बने रहिए, हम आप तक हर महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर पहुंचाते रहेंगे।

0: श्रीनगर है, दावी आकाशवाणी श्रीनगर है। उर्दू खबरों के साथ मैं बसारत गुल। मरकजी काबीना ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की एक बेंच कायम करने की मंजूरी दी है। इस बात की जानकारी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। वजीर मौसम ने कहा कि इस कदम से इंसाफ और अदलिया तक लद्दाख के लोगों की रसाई मजीद आसान बनेगी। उन्होंने मजीद कहा है कि सरकार लद्दाख की मजमू तरक्की और इस खिते के लोगों के आइनी हकूक को तहफ़ फराहम करने की वादाबंद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सरहदी इलाकों में गरीबी की सतह में कदरें कमी वाक़ हुई है, जबकि इन इलाकों से शहरों की तरफ हुजरत की शरह में 50% कमी वाक़ हुई। जम्मू सूबे के कठुआ जिले में करवल कृष्णा नामी सरहदी गांव के दौरे के दौरान वहां एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप मकामी मईशत को मजबूत कर रहे हैं और हमारे नौजवान दिल्ली और मुंबई में रहने वाले अपने हमपला नौजवानों की तरफ बड़े ख्वाब देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सरहदी देहात मुल्क के आखिरी नहीं बल्कि कौम की शिनाख्त और तरक्की के लिहाज से सफे अव्वल के गाँव हैं।
1: लंबे समय तक हमारे राष्ट्रीय जीवन में बॉर्डर शब्द के साथ एक दूरी जुड़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे सीमा पर बसे गांव देश के नक्शे के अंतिम छोर पर हैं। ऐसा माना जाता था कि सीमावर्ती गांव सरकार की प्राथमिकताओं से के हाशिए पर हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई। अब आप हाशिए पर नहीं है बल्कि अब भारत के द्वार पर है और भारत आप ही से आरम्भ होता है। आज मैं युवा पीढ़ी नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि आपके सपनों की सीमा गाँव की भौगोलिक सीमा नहीं, पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है।
0: इस मौके पर एलजी ने सिक्योरिटी जवानों के

साथ बातचीत करके मुल्क की सरहदों की मजबूत निगरानी के लिए उनका हौसला बढ़ाया। वजीर आलम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा जम्मू कश्मीर सरकार अवाम के लिए बुनियादी ढांचे की हर सहूलत पूरे मयार के साथ फराहम करने के लिए पुरअज़म है। श्रीनगर के आलूची बाग में करीब 26 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तामीर किए जाने वाले जदीद तरीन ज़बखाने का संग बुनियाद रखने के बाद मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरी और दोनों इलाकों में तामीर तरक्की के अमल को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। वाजिर है कि ज़बेख़ाने की सहूलत में रोजाना 5,000 बेड बकरियों को प्रोसेस करने की सलाहियत होगी। इससे पहले वजीर आला ने कल राजबाग श्रीनगर में स्पोर्ट्स काउंसिल के गिंडन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल और दीगर सहूलियात का मुआयना किया। खुराक शहरी रसादात और अमूरी सारफीन के वजीर सतीश शर्मा ने सिविल सेक्रेटेरियट श्रीनगर में कई वफूद ने मुलाकात करके अपने शोबों और इलाकों से जुड़े अवामी और तरक्याती नवियत के मामलात उठाए। इस दौरान बुधल, सोनावारी, रजौरी, पुंछ और उड़ी के असम्बली मेम्बरान ने भी वजीर मौसूब से मुलाकात करके उनके नोट्स में अपने अपने असम्बली हलकों से जुड़े तरक्याती मामलात लाए। वजीर मौसूब ने सभी के मुतालबात गौर से सुनने के बाद उन्हें यकीन दिलाया कि तमाम जायज मसाइल और मांगों को मुनासिब वक्त पर हल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शमसी और पनबिजली के वसाइल की काफी सलाहियत मौजूद है जिसे मुनासिब प्रोजेक्टों को इस्तेमाल में ला के बरोए का लाया जा सकता है। श्रीनगर में महकमे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एक काबिल तजी तवनाई के प्रोग्राम और जम्मू कश्मीर में सब्ज तवनाई की पॉलिसियों पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि इन वसाइल को बरोए का लाने से न सिर्फ तवनाई की यकीनी फराहमी मुमकिन बन सकेगी बल्कि एक साफ व शफाफ और हरे भरे जम्मू कश्मीर के तामीर के अलावा मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। मीटिंग में जानकारी दी गई है कि नई और काबिल तजी तवानाई की वजारत की तरफ से मंजूर करदा 15 तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्टों में से 8 DPR जम्मू कश्मीर के लिए मंजूर किए गए हैं। ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में वादी भर में सीरतुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वलादत बासआदत के मौजूआत के साथ रूह परवर मजालिस का सिलसिला जारी है। इन मजालिस में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। 12 रबीउल अव्वल 26 अगस्त को मनाई जाने वाली असल तकरीब के लिए सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने इंतजाम और तैयारियों का जायजा लिया। इधर डिप्टी कमिश्नर बडगाम अतहर आमिर खान ने भी ईद मिलाद की तकरीबात मनाने के सिलसिले में जिला अफसरों की एक मीटिंग में तैयारियों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन भट्ट ने भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जिले में मनाई जाने वाली तकरीबात की तैयारियों का जायजा लिया। और अब दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.5 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी की आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, इस साल मौसम की खराब स्थिति और यात्रा मार्ग पर मरम्मत के काम के चलते 9 अगस्त से नियमित यात्रा अमरनाथ यात्रा दोनों मार्गों पर रोक दी गई है, लेकिन छड़ी मुबारक की पारंपरिक यात्रा पहलगाम मार्ग से जारी रहेगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन पवित्र गुफा में पहुंचकर अमरनाथ यात्रा 2026 के समापन को चिन्हित करेगी। श्रोताओं, हमारे साथ बने रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में और सुनिए ये गायत्री मंत्र।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी, 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर, और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी के आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर।

श्रोताओं, अमरनाथ जी यात्रा की परंपरा में छड़ी मुबारक का बहुत खास महत्व है। छड़ी मुबारक को भगवान शिव जी की पवित्र छड़ी माना जाता है। ये अमरनाथ यात्रा की पुरानी परंपरा और आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। पहलगाम मार्ग अमरनाथ यात्रा का पुराना और पारंपरिक मार्ग है। पहलगाम से चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचा जाता है। इस साल मौसम की खराब स्थिति और यात्रा मार्ग पर मरम्मत के काम के चलते 9 अगस्त से नियमित अमरनाथ यात्रा दोनों मार्गों पर रोक दी गई।

लेकिन छड़ी मुबारक की पारंपरिक यात्रा पहलगाम मार्ग से जारी रहेगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन पवित्र गुफा में पहुंचकर अमरनाथ यात्रा 2026 के समापन को चिन्हित करेगी। श्रोताओं, आप सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। हम हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे।

बात करते हैं श्रावण महीने की, जिसे भगवान शिव जी की भक्ति के लिए बहुत खास माना जाता है। हिंदू धर्म में श्रावण को पवित्र महीनों में से एक माना गया है। ये महीना भगवान शिव जी की पूजा, व्रत और ध्यान के लिए विशेष माना जाता है। माना जाता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव जी की पूजा करने, उनका नाम लेने और मंदिर में जल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है। भक्त इस पूरे महीने शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और फूल चढ़ाते हैं। कई लोग सोमवार का व्रत भी रखते हैं, जिसे सावन सोमवार कहा जाता है। श्रावण महीने के दौरान कंवर यात्रा भी होती है। इसमें भक्त पवित्र नदियों से जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। भक्त इसे भगवान शिव जी के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण के रूप में देखते हैं। श्रोताओं, श्रावण के कई प्रमुख त्योहार हैं। सावन सोमवार, श्रावण के सोमवार भगवान शिव को समर्पित होते हैं। भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और शिव मंदिरों में पूजा करते हैं। और अगर हम नाग पंचमी की बात करें तो श्रावण में नाग पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। लोग प्रकृति और जीव जंतु के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। श्रोताओं, अगर रक्षाबंधन की भी बात की जाए तो श्रावण के अंत में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। ये भाई बहन के प्यार का त्यौहार है, जिसे रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। श्रोताओं, कई वर्षों में श्रावण के आसपास कृष्णा जन्माष्टमी का समय भी आ जाता है। हालांकि इसका सही दिन हिंदू पंचनाग के हिसाब से बदलता है। इस दिन भगवान कृष्णा के जन्म की खुशी मनाई जाती है, जिसे जन्माष्टमी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। श्रावण का आध्यात्मिक महत्व अगर उसकी बात की जाए तो श्रोताओं, श्रावण को सिर्फ व्रत और पूजा का महीना नहीं माना जाता, बल्कि मन को साफ करने, अच्छे विचार रखने और अपने जीवन में शांति लेने का समय भी माना जाता है। श्रोताओं, हम आप तक क्षण क्षण की महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में, जो आप FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर सुनते हैं। और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH के विभिन्न सर्विसेज, जैसे आकाशवाणी की आराधना चैनल पर, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर तथा न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर, और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी की आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर तथा न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे श्रावण महीने की और श्रावण में मनाए जाने वाले त्योहारों की। श्रावण सोमवार की अगर बात करें तो श्रावण के सोमवार भगवान शिव जी को समर्पित माना जाता है। भक्त सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। सोमवार को शिव जी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो श्रोताओं, नाग पंचमी की अगर बात की जाए तो श्रावण शुक्ला पक्षा की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा होती है। इस परंपरा के जरिए प्राकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का भाव भी दिखाई देता है। श्रोताओं, श्रावण का महीना अपने साथ सिर्फ भगवान शिव जी की भक्ति ही नहीं बल्कि कई त्योहार, व्रत और परंपराएं भी लेकर आता है। सावन सोमवार से लेकर नाग पंचमी और रक्षाबंधन तक इस पूरे महीने में अलग अलग दिन अपने खास महत्व के साथ मनाए जाते हैं। हर परंपरा के पीछे भक्ति के साथ परिवार, प्रकृति और अच्छे जीवन की कामना जुड़ी हुई है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण और मैं हूं आपकी उद्घोषिका अनिका रशीद। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं शिव विवाह।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर, और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH के विभिन्न सर्विसेज पर, आकाशवाणी की आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, अब वक्त आ गया है इस सुबह के खास प्रसारण से विदा लेने का। श्री अमरनाथ जी की इस पवित्र यात्रा के साथ गुजारा हुआ ये सुबह का सफर हमारे लिए भी एक सुंदर अनुभव रहा। आस्था के इस मार्ग पर हर कदम हमें एक नई सीख देता है कि सफर चाहे कितना भी कठिन हो, अगर दिल में विश्वास हो और मन में भगवान का नाम हो तो हर रास्ता आसान लगने लगता है। पहाड़ों की खामोशी हो, बाबा बर्फानी के दर्शन की आस हो या भक्तों के चेहरे पर दिखाई देने वाली श्रद्धा, श्री अमरनाथ जी की यात्रा अपने आप में भक्ति, विश्वास और मन की शांति का एक अनोखा अनुभव है। इसी भावना के साथ मैं उद्घोषिका अनिका रशीद फराश आपसे इस सुबह के प्रसारण के लिए विदा लेती हूँ। लेकिन हमारा ये सफर यहीं समाप्त नहीं होता। दिन भर श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी और भी जानकारियाँ, यात्रा के रास्ते, भक्तों के अनुभव और इस पवित्र यात्रा से जुड़े अन्य कार्यक्रम आप तक पहुँचते रहेंगे। अब दिन के आगे का प्रसारण आप सुनेंगे हमारे साथी उद्घोषक जुबैर से, तो बने रहिए हमारे साथ इसी श्रद्धा, इसी विश्वास और इसी पवित्र भावना के साथ। बाबा बर्फानी सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय करें, सभी को सुरक्षित रखें और हर दिल में शांति और विश्वास बनाए रखें। इसी शुभकामना के साथ मैं अनिका आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़। पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़। देश के विभिन्न भागों में आप हमें डीटीएच के माध्यम से आराधना चैनल पर, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर, आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल आराधना पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज ऑन एयर तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, दिन के 1 बजने को है, आइए अब समाचार सुनते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपए का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में है। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,538 जबकि निफ्टी 24,231 पर था। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अम्स्टरडैम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। India and Brazil have signed a memorandum of understanding to deepen cooperation in telecommunications and information and communication technologies ICTs on the sidelines of the BRICS ICT track meeting. Union Minister Sindhya said in a post that the MOU would deepen bilateral collaboration on universal connectivity, cybersecurity, digital public infrastructure, emerging technologies, capacity building and exchange of best practices. He called the agreement a strong step forward in bolstering India-Brazil collaboration for a secure and inclusive digital future. The MOU was signed on the sidelines of the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune by Union Minister of Communications Jyotiraditya Sindhya and Mr. Frederico de Siqueira Filho, Minister of Communications, Brazil. The 12th BRICS Communications Ministers meeting chaired by Union Communications Minister Jyotiraditya Sindhya is underway in Pune. It brings together communications ministers and senior representatives from BRICS member countries to deliberate on strengthening cooperation in information and communication technologies, digital transformation, innovation and resilient digital infrastructure. The theme of the meeting is Innovate, Cooperate and Transform for a Resilient Future. The event provides a platform for BRICS member countries to exchange views on emerging technologies, digital public infrastructure, future networks, cybersecurity, capacity building, and inclusive digital connectivity. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has underlined India's commitment to deepening economic partnership with Singapore and expanding business partnerships across Asia with greater emphasis on business-to-business collaboration, addressing the non-profit business school INSEAD alumni and students, Singaporean entrepreneurs and Indian businesses. At the India-Singapore Business Forum, the minister highlighted India's strong growth trajectory, investment opportunities, and the government's efforts under the leadership of Prime Minister Narendra Modi to enhance the ease of doing business. The Union Minister further joined Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, and Minister of State for Commerce and Industry, Jitin Prasada, in engaging with their Singaporean counterparts at the 4th India-Singapore Ministerial Roundtable. Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi highlighted that the country has solarized over 27 lakh pumps through Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Uthan Mahabhyan PM Kusum so far, and the program has also added 15.8 gigawatt of renewable energy capacities, helping save around 806 million litres of diesel every year. Mr. Joshi chaired a meeting with the officials from the ministry yesterday to discuss the roadmap for the next phase of the PM Kusum scheme. In a social media post, Mr. Joshi said during the meeting they discussed promoting agrivoltaics in the next phase of the scheme. The minister added that they also deliberated on the trajectory for manufacturing polysilicon in the country and measures to build a robust, fully integrated domestic solar manufacturing ecosystem. The Supreme Court today modified its May 2025 verdict, reducing the earlier mandatory 3-year legal practice requirement for law graduates seeking to appear in entry-level judicial service examinations to 1 year. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justices A. G. Massey and K. Vinod Chandran said in a split decision of 2-1 while dismissing the review petition. The bench said candidates appearing for judicial service examinations notified between 25th May 2025 and 31st March 2027 would remain eligible regardless of prior experience. U.S. President Donald Trump has said the United States is essentially controlling strategic waterways linked to Iran and will soon take full control, while reiterating that Tehran will never be allowed to acquire a nuclear weapon. Speaking in an interview, Trump defended U.S. military action against Iran and acknowledged that Americans could face higher petrol and energy costs as a result of the conflict. Benchmark domestic equity indices were trading flat in the afternoon session today. The Sensex had dropped to 77,538, while the Nifty was down at 24,231 when reports last came in.

0: And with that, we end this news bulletin.
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz पहलगाम के प्राचीन मार्ग से आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH की आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन एयर तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है। छड़ी मुबारक का पवित्र कारवां जो है अमरनाथ गुफा की ओर रवा दवा है। आपको याद दिलाते चले, इस वर्ष 4.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने जो है पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं और सभी शिव भक्त जो है प्रशासन द्वारा उठाए गए इकदाम से बड़े ही खुश और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। श्रोताओं, श्रद्धा आस्था और अध्यात्म से भरी श्री अमरनाथ जी पवित्र यात्रा जो है अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रही है। हर वर्ष की तरह जो है इस वर्ष भी छड़ी मुबारक यानी भगवान शिवा की पवित्र छड़ी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक पहुंचाकर जो है यात्रा का समापन को जो है दिव्य रूप प्रदान कर दिया जाएगा। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा जो है इसमें जो है ये कारवां शुरू हो चुका है। 15 अगस्त से ही जो है छड़ी मुबारक का कारवां शुरू हो चुका है और ये कारवां जो है रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर जो है मुकम्मल होगा। रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर जो है छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा पहुंचाकर शिवजी के कदमों में अर्पण किया जाएगा। श्रोताओं, छड़ी मुबारक केवल एक पवित्र छड़ी नहीं बल्कि बाबा अमरनाथ जी की पारंपरिक पूजा और आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा में पवित्र छड़ी को भगवान शिवा का स्वरूप मानकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ अमरनाथ गुफा तक ले जाया जाता है। 15 अगस्त से ये कारवां जो है शुरू हो चुका है, ये यात्रा जो है शुरू हो चुकी है। कल 22 अगस्त को जो है मुख्य छड़ी यात्रा का जो है प्रारंभ होगा। 22 अगस्त से छड़ी मुबारक की मुख्य पवित्र यात्रा शुरू होगी। महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में पवित्र छड़ी को अमरनाथ जी की गुफा की ओर ले जाया जाएगा। 22 और 23 अगस्त को पहलगाम में विश्राम होगा। पहलगाम पहुंचने पर भक्तों के बीच भक्ति और शिव नाम का माहौल देखने को मिलेगा। 24 अगस्त को चंदनवाड़ी छड़ी मुबारक को पहुंचाया जाएगा। यहीं से यात्रा और भी कठिन पहाड़ों की ओर बढ़ेगी। 25 अगस्त को शेषनाग में छड़ी मुबारक को रखा जाएगा। शेषनाग के आध्यात्मिक और प्राकृतिक वातावरण में भक्तों के लिए ये पड़ाव जो है विशेष महत्व रखता है। 26 और 27 अगस्त पंचतरणी के मौके पर छड़ी मुबारक को जो है पंचतरणी में रात को विश्राम किया जाएगा। पंचतरणी

ये पवित्र अमरनाथ गुफा का अंतिम चरण शुरू होता है। आपको एक बार फिर याद दिलाते चले, 26 और 27 अगस्त को जो है छड़ी मुबारक पंचतरणी में 2 रात विश्राम करेगी। पंचतरणी से पवित्र अमरनाथ गुफा का अंतिम चरण शुरू होता है। यहाँ से हर भक्त के मन में एक ही आस होती है, बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन। 28 अगस्त पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक, और फिर आता है वो पवित्र दिन जिसका हर शुभ भक्त बेसब्री से इंतज़ार करता है। 28 अगस्त रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर छड़ी मुबारक को जो है श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में पहुंचाया जाएगा। गुफा में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और बाबा बर्फानी के चरणों में श्रद्धा अर्पित की जाएगी। इस पवित्र अवसर पर, रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर जो है इस यात्रा का समापन भी होता है। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ बना रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बादल 103.7 MHz पहलगाम के प्राचीन मार्ग से। आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आराधना चैनल पर सुन पा रहे हैं। आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, कुछ क्षणों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनते हैं।

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। पुणे में ब्रिक्स आईसीटी मीटिंग के मौके पर भारत और ब्राजील ने डिजिटल इख्तिरा को फरोग देने और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों में ताबुन की खातिर मुफाहिमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई कानूनी खिदमात के इम्तिहानात के लिए प्रैक्टिस की शर्त में कमी करके 3 साल से 1 साल कर दिया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ इकतसादी शराकतदारी को बढ़ाने के लिए भारत के अज़्म को दोहराया है। उन्होंने सिंगापुर के तजारत और सनत के वजीर के साथ मुलाकात की। अमरीका ने ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां लगाने के बारे में खबरदार किया है। ईरान ने कहा है कि ये कदम अमरीका की दाखिली इकतसादी मुश्किलात से तवज्जो हटाने के लिए उठाया गया है। और FIH आलमी कप में भारत की खवातीन टीम का मुकाबला नैदरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। टेली मुवासलात के महकमे ने बताया है कि भारत और ब्राजील ने टेली मुवासलात और इतलाआती मुवासलाती टेक्नोलॉजी ICT से मुतालिक तावुन को मजीद बढ़ाने की खातिर आज पुणे में ब्रिक्स ममालिक की इतलाआती मुवासलाती टेक्नोलॉजी ICT ट्रैक मीटिंग से अलहदा एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में टेली मुवासलात के महकमे ने कहा कि इस मुआहिदे से डिजिटल इख्तिरा को फरोग मिलेगा, डिजिटल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में तावुन को फरोग मिलेगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: पुणे में मुनाकिदा ब्रिक्स ममालिक के मुवासलात के वजरा की मीटिंग से अलहदा मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के मुवासलात के वजीर फ्रेडरिको डी सिकेरा फिल्हो ने इस मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक पोस्ट में कहा कि इस मुफाहमत नामे से यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अमाबीन बुनियादी ढांचे, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, सलाहियत साजी और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले से मुतालिक दो तरफा तआवुन में मजीद इजाफा होगा। इस शराकतदारी का मकसद दोनों मुल्कों में शमूलियाती महफूज और मजबूत डिजिटल इको निज़ाम को फरोग देना है। कौमुदी पारीक की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: भारत की ब्रिक्स 2026 की सदारत के तहत जयपुर में आज दोपहर ब्रिक्स सियाहती वुजरा की मीटिंग शुरू होगी। ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के सियाहती वुजरा और सीनियर अफसरान इस दो रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें सियाहत के शोबे में तावुन बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। इस मीटिंग में पायदार और जिम्मेदार सियाहत, महारत पैदा करने और सफर को आसान बनाने, नीज सियाहत में मस्नूई जहानत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जैसे मौजूदात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस वजारती मीटिंग से तवक्को है कि ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान सियाहत के शोबे में तावुन को तकवीत मिलेगी और सयाहों की आमदोरफ्त में इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 के अपने फैसले को आज तब्दील किया है। इसके तहत इब्तदाई सतह के कानूनी खिदमात के इम्तिहानात देने के लिए कानून के तलबा को 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस करना ज़रूरी था, जिसको अब 1 साल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस AG मसीह और के विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल एक बेंच ने 1-2 से ये फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि कानूनी खिदमात के इम्तिहानात देने वाले उम्मीदवार जो 25 मई 2025 और 31 मार्च 2027 के दरमियान नोटिफाई किए गए हैं, इम्तिहान देने के मजाज होंगे। ताहम इन इम्तिहानात के जरिए मुंतखब किए गए उम्मीदवारों को पहले ट्रेनी जुडिशल अफसर के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा और उन्हें जुडिशल अकेडमी में 1 साल की तरबियत हासिल करना होगी, जिसके बाद मजीद 1 साल के लिए उन्हें क्लर्क के तौर पर काम करना होगा। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने पूरे एशिया और सिंगापुर के साथ इकतसादी साझेदारी को सनत से सनत के दरमियान मजबूत तालमेल पैदा करते हुए भारत के अज़्म को उजागर किया है। भारत सिंगापुर बिजनेस फोरम में सिंगापुर के एंटरप्रेन्योर्स और भारतीय ताजिरों और तिजारती स्कूल INSEAD के फारिगीन से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने भारत के तरक्की के सफर, सरमायाकारी मवाक़े और तिजारत के लिए पैदा की गई आसानियों को बढ़ाने की खातिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के तहत हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। जनाब गोयल ने सिंगापुर के खारिजी उमूर और तिजारत और सनत के वज़ीर मुमलिकत गान सीओ हुआंग और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात से मुलाकात भी की। बरामद को फरोग देने की खातिर APEDA कम कीमत रोड शो के मौके पर यह मुलाकात मुनक़िद की गई थी। ये खबरें आकाश

वाणी से नशर की जा रही हैं। नई और काबिले तश्दीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजारत के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने पीएम कुसुम के अगले मरहले के रोड मैप के बारे में बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने बताया कि कल इस मीटिंग के दौरान उन्होंने मस्कूरा स्कीम के अगले मरहले में ज़रई शमसी तवानाई को मजीद फरोग देने के बारे में

0: तरह मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने के इकदामात के बारे में भी तबादला ख्याल किया। हुकूमत ने छोटे और हाशिए पर रह रहे किसानों समेत सभी किसानों तक कम से कम इमदादी कीमत MSP के फायदे पहुंचाने को यकीनी बनाने के लिए कई इकदाम किए हैं। इसमें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा बड़ा कदम है। ये स्कीम लोगों के दरमियान कीमतें मुस्तहकम करते हुए किसानों को दी जाने वाली कीमतों को यकीनी बनाने के लिए सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। किसानों की बहबूद और ज़िराअत के मरकजी वजीर ने बताया कि इस स्कीम के तहत पिछले कुछ बरसों में बजट में मुख्तस की जाने वाली रकम में इजाफा किया गया है। 2024-25 में इस स्कीम के तहत हकीकी खर्च तकरीबन 5,400 करोड़ रुपए था, जिसमें इजाफा करते हुए 2026-27 में इसे 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर दिया गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के दरमियान उधमपुर होते हुए एक तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करने जा रहा है। इस नई रेल खिदमत से मुसाफिरों को काफ़ी राहत मिलेगी और जम्मू और कश्मीर के दो शहरों के दरमियान रेलगाड़ी की खिदमत में इजाफा होगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव का एक खत शेयर किया है। इस खत में जनाब वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर होते हुए जम्मू तवी और श्रीनगर के दरमियान एक तीसरी वंदे भारत के लिए मंजूरी दे दी गई है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास इराकची ने ईरान के खिलाफ इकतसादी धमकियों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि इस तरह की नाकाम पॉलिसियों से ईरान के लोगों में मजीद नफरत पैदा होगी और ये पॉलिसियां मजीद नाकाम होंगी। इराकची का बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ इंतहाई सख्त इकतसादी इकदाम की धमकी के बाद सामने आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अब्बास इराकची ने कहा कि इन धमकियों का मकसद अमरीका के अवाम की मुल्क के अंदरूनी माली मसाइल से तवज्जो हटाना है। उन्होंने कहा कि अमरीका की इकतसादी दहशतगर्दी से आलमी मईशत और दुनिया भर के ममालिक की अपनी खुद मुख्तारी को खतरा लाहिक है। इससे कबल अमरीका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कल कहा कि ईरान दुनिया की तारीख में सबसे बड़े इकतसादी तौर पर अलग थलग किए जाने का सामना करेगा। एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने उन ममालिक और कंपनियों को इजाफी बंदिशों की धमकी दी थी जो ईरान के साथ कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमरीका के इत्तेहादी अपने मौकिफ के ताल्लुक से फैसला करें। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में तिब्बी जांच के बाद आज सुबह फिर से रावलपिंडी की अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म की तामील करते हुए इमरान खान को आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। हॉकी में आज एम्स्टलफिन में FIH आलमी कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मुकाबले में भारतीय खवातीन टीम नेदरलैंड्स का सामना करेगी। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पुणे में ब्रिक्स ICT मीटिंग के मौके पर भारत और ब्राज़ील ने डिजिटल इख्तिरा को फ़रोग देने और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों में तआवुन की खातिर मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई कानूनी खिदमात के इम्तहानात के लिए प्रैक्टिस की शर्त में कमी करके 3 साल से 1 साल कर दी है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ इकतसादी शराकतदारी को बढ़ाने के लिए भारत के अज़्म को दोहराया है। उन्होंने सिंगापुर के तजारत और सनत के वजीर के साथ मुलाकात की। अमरीका ने ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ लगाने के बारे में खबरदार किया है। ईरान ने कहा है कि ये कदम अमरीका की दाखिली इकतसादी मुश्किलात से तवज्जो हटाने के लिए उठाया गया है। और FIH आलमी कप में भारत की खवातीन टीम का मुकाबला नेदरलैंड्स की टीम से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Union Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones for several projects of 189 crore rupees at headquarters of Sashastra Seema Bal in Siliguri. India and Brazil sign MOU on sidelines of BRICS ICT meeting in Pune to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies. Supreme Court reduces 3-year legal practice to 1 year for entry-level judicial service examinations.

0: प्रतिबद्धता दोहराई, सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले SSB के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से SSP के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स ICT बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
4: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसेह और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
5: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
6: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमेरिकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जल मार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
7: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्य

0: कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमेरिका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमेरिका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
2: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशू शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज एम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
4: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
3: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वीव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोतो, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 इस पवित्र यात्रा में इस वर्ष 4.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। एक इंतज़ार की रात अब आज की रात है, यानी कल से जो है छड़ी मुबारक अपने अंतिम और अति पवित्र चरण की यात्रा पर निकलने वाली है। ज़रा सोचिए, पहाड़ों की खामोशी, ठंडी हवा, हरी भरी वादियाँ और उनके बीच शिव भक्ति में लीन साधु संत और भक्त, हाथों में श्रद्धा, मन में महादेव और हर जुबान पर हर हर महादेव। ये दृश्य सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता, बल्कि से महसूस किया जाता है। छड़ी मुबारक हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। यात्रा का मतलब सिर्फ किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि यात्रा की असली अर्थ है अपने अंदर की दूरी को कम करना। जब एक भक्त पहाड़ पर चढ़ता है तो वो सिर्फ ऊंचाई नहीं नाप रहा होता, वो अपने विश्वास की गहराई नाप रहा होता है। हर कठिन रास्ता कहता है श्रद्धा रखो, हर थकान कहती है महादेव तुम्हारे साथ है, और हर दर्शन के बाद मन कहता है जो कुछ है महादेव की कृपा से है। छड़ी मुबारक का ये सफर कल से शुरू होगा। इस छड़ी मुबारक को, इस पवित्र छड़ी को जो है पवित्र गुफा पहुंचाया जाएगा रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर। छड़ी मुबारक पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी और उसी के साथ जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का समापन भी होगा। शिव जी से हमारी यही प्रार्थना कि सभी देशवासियों को स्वस्थ और प्रसन्न रखे, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आराधना चैनल पर सुन पा रहे हैं, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम। देश के विभिन्न भागों में आप हमें डीटीएच के माध्यम से, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर तथा आकाशवाणी के ओडीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोता, आपको याद दिलाते चले, छड़ी मुबारक का जो सिलसिला है, कल से जो यात्रा इसका आरम्भ होगा, छड़ी मुबारक की इस शेड्यूल को लेकर जो है पल पल हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। कल से जो है छड़ी मुबारक का सफ़र पहलगाम की ओर शुरू होगा। इसी हवाले से श्री महंत दीपेंद्र गिरी जी की अगुवाई में कुछ दिन पहले हुई पूजा से ली गई चंचल क्या आपको सुनाते हैं।
1: यहाँ से निकलने के बाद रात्रि को पहला पड़ाव पंपोर, दूसरा पड़ाव बिजबहाड़ा, तीसरा पड़ाव गौतम नाग होकर अनंतनाग में, उसके पश्चात मारतंड। कभी कभी तिथियों में भिन्नता होती थी तो दो रात्रि भी मारतंड में हम रुकते थे। उसके पश्चात अश्मकाम के बाद पहलगाम। दशमी और एकादशी की रात्रि हमेशा परंपरागत हम रुकते हैं पहलगाम में, जो कि इस वर्ष 22 और 23 अगस्त को है। 24 अगस्त को रात्रि पड़ाव होगा चंदनवाड़ी में, 25 अगस्त को रात्रि पड़ाव होगा शेषनाग में। इस बार तिथियों में भिन्नता है। सामान्यतः हम पंचतरणी में एक रात्रि पड़ाव करते हैं श्रावण पूर्णिमा से पूर्व चतुर्दशी के दिन, लेकिन इस बार थोड़ी तिथियों में भिन्नता है तो 26 और 27 दो रात्रि पड़ाव होगा पंचतरणी में, और अंततः 28 अगस्त जो कि मुख्य दर्शन का दिन है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्रावण पूर्णिमा के दिन इस पवित्र गुफा में बनने वाले हिमलिंग, जो कि भगवान शिव हिमलिंग के रूप में विद्यमान रहते हैं, उनके दर्शन करने का महात्म्य है। तो परंपरागत छड़ी मुबारक को हम लेकर उस पवित्र गुफा में जाएंगे जहां माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने वो कथा कही जिसको सुनने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है, और वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन करने के पश्चात रात्रि पड़ाव पुनः हम श्रावण पूर्णिमा के दिन पंचतरणी में करेंगे। 28 की रात पंचतरणी में, 29 तारीख प्रातःकाल पंचतरणी से चलकर शेषनाग होते हुए चंदनवाड़ी होते हुए हम रात्रि पड़ाव करेंगे पहलगाम में। 30 तारीख को प्रातःकाल पहलगाम में लिद्दर नदी के किनारे पूजन विसर्जन और उसके पश्चात महात्माओं का भोज, और उसके साथ ही छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की जो वार्षिक यात्रा है वो पूर्ण।
2: सर, एक बात चल रही है कि सर खुशी की बात है कि लोग अब जुटते जा रहे हैं वापस एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से जब धार्मिक तरीके से यात्रा शुरू होती है उससे पहले ही जो गुफा में कई लोगों को निराश भी होना पड़ता है, क्या कोई सुझाव दिया आपकी तरफ से?
1: हाँ, मैं अनेक वर्षों से बात कहता हूँ और इस बार भी हमने देखा कि जो प्रथम 10 या 12 दिन में थे, 3 जुलाई को ये यात्रा प्रारंभ हुई, तो संभवतः 10 दिन या 12 दिन के बाद संख्या ये 3 लाख तक पहुंच गई थी। 3 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके थे। तो उसके बाद इस वर्ष तो जो मौसम है उसने काफ़ी बाधाएं पैदा की, और मुझे स्मरण है कि मैं पहलगाम में गया 29 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूजन करने के लिए, तो वहां मुझे बताया गया कि 19 जुलाई के बाद पहलगाम वाला मार्ग उस वहाँ से यात्रा सस्पेंड कर दी गई थी, और अभी 4-5 दिन पहले जो मंडल आयुक्त हैं डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, उनकी तरफ से स्टेटमेंट हुआ कि 9 तारीख के बाद जो बालटाल वाला मार्ग है वो भी हम बंद कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कश्मीर में इस वर्ष जो है जुलाई और अगस्त में वर्षा अत्यधिक हुई, नॉर्मल से अधिक, और बीच बीच में तो यहाँ फ्लड की वार्निंग्स थी, मैजूर नगर इत्यादि, तो पानी थोड़ा सा आया भी। तो मार्ग ऐसा बताया जाता है कि मार्ग जो है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ। तो मुझे लगता है तीर्थयात्री ये निश्चित है जो आप कह रहे हैं

0: ये दुख अवश्य होता है कि हम जैसे ही अप्रैल मार्च में जैसे ही रजिस्ट्रेशन की बात शुरू होती है, जो तो शिव भक्त हैं उनके मन में यात्रा के लिए जो हृदय में सुपुर्णा वो प्रारंभ हो जाती है, और उसके अनुरूप वो रजिस्ट्रेशन और दूसरी तैयारियां, अपनी छुट्टी रिजर्वेशन इत्यादि, बड़ी ये लंबी एक प्रक्रिया है, क्योंकि एक मास के बाद या 2 मास के बाद आपने यात्रा करनी है, तो अनेकों व्यवस्थाएँ बनाकर तीर्थयात्री यहाँ आता है। और इस वर्ष को ये अपवाद है क्योंकि वर्षा अत्यधिक हुई, लेकिन इससे पूर्व भी मैं पिछले 4 वर्षों से लगातार ये देख रहा था कि श्रावण पूर्णिमा से लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन पहले ये यात्रा किन्हीं कारणों से ये रोक दी जाती थी। तो निश्चित रूप से मैं पिछले वर्ष भी कहा, फिर आपके माध्यम से ये बात दोहराना चाहूँगा कि चूंकि ये तीर्थ यात्रा है, इसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए और उसके अनुरूप ही सारी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। अगर जो व्यक्ति या जो श्रद्धालु देश से या विदेश से आकर श्रावण पूर्णिमा के दिन दर्शन करना चाहता है, जैसा कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि इसका जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, जो धार्मिक महात्म्य है दर्शन करने का, वो श्रावण पूर्णिमा का दिन है, तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं उसी तरह से उसके अनुरूप की जानी चाहिए। और जैसे कि इस बार मैं कहूँगा कि ये एक्सेप्शनल केस था, तो 9 तारीख को ही, मतलब 9 तारीख से पहले ही, शायद 8 तारीख को ही बता दिया गया कि ये यात्रा मार्ग जो है, जब तक गवर्नमेंट ना कहेगी या प्रशासन नहीं कहेगा, आप घर से ना निकलें। और मुझे अभी बताया गया, कुछ यात्री मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि वंदे भारत ट्रेन के अंदर घोषणा की जाती है कि जो तीर्थ यात्रा, अमरनाथ जी यात्रा के लिए जा रहे हैं, वो उतर जाए, तीर्थ यात्रा बंद है। तो ऐसी प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इस वर्ष, और ये निश्चित है कि यात्री, तीर्थ यात्री की सुरक्षा वो सर्वोपरि है। मतलब प्रशासन ये चाहेगा कि किसी भी यात्री को क्षति ना पहुंचे और वो सुरक्षित जाएं और दर्शन करके सकुशल लौटें। लेकिन इसका सुखद पहलू इस बार की यात्रा का यह है कि जैसे मैंने कहा कि 3 जुलाई को यात्रा जो प्रारंभ हुई, और शायद 13 या 14 तारीख को यह समाचार था कि 3 लाख यात्री, औसतन 30,000 यात्री प्रतिदिन जाके दर्शन किए, और आज की तारीख में जो मेरी जानकारी है, 4,75,000 से कुछ अधिक यात्री इस बार ऊपर जाके पवित्र गुफा में उन्होंने दर्शन किए और सकुशल अपने घरों को लौट गए। और मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि जो भी श्रद्धालु देश से विदेश से आता है, उसको ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं कि वो श्रावण पूर्णिमा के दिन जाकर भी दर्शन कर पाए।
1: श्रोतो, आप श्री महंत दीपेंद्र गिरी जी की आवाज़ में ये शब्द सुन रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से जो है छड़ी मुबारक की यात्रा रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी। कल से जो है ये यात्रा पहलगाम की ओर रवाना की जाएगी। श्रद्धा, आस्था और अध्यात्म से भरी श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरणों की ओर बढ़ रही है। हर वर्ष की तरह जो है छड़ी मुबारक का कारवा, छड़ी मुबारक का ये पवित्र सफर शुरू हो चुका है। कल 22 अगस्त 22 अगस्त से जो है इस यात्रा का प्रारंभ होता है, मुख्य प्रारंभ होता है। श्री महंत दीपेंद्र गिरी जी की अगुवाई में पवित्र छड़ी को अमरनाथ जी की गुफा की ओर ले जाया जाएगा। 22-23 को पहलगाम में विश्राम होगा। पहलगाम पहुंचने पर भक्तों के बीच भक्ति और शिव नाम के माहौल जो है हमें अद्भुत देखने को मिलता है। 24 अगस्त को चंदनवारी में ये छड़ी मुबारक पहुंचाई जाएगी। यहीं से

यात्रा और भी कठिन पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगी। उसके बाद शेषनाग 26 और 27 को पंचतरणी, जहां दो रात का विश्राम होगा। पंचतरणी से पवित्र अमरनाथ गुफा का अंतिम चरण शुरू होता है। यही से हर शिव भक्त के मन में एक ही आस होती है, वो बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन। 28 अगस्त रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में पहुंचाई जाएगी। गुफा में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। बाबा बर्फानी के चरणों में श्रद्धा अर्पित की जाएगी। आकाशवाणी इस यात्रा से जुड़ी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक बराबर पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH की आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 इस वर्ष की यात्रा में 4.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सभी शिव भक्त जो है प्रशासन द्वारा उठाए गए इकदाम से बेहद खुश और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक दोनों मार्गों पर, बालतल के मार्ग और पहलगाम के प्राचीन मार्ग की अगर बात करें तो जगह जगह पर जो है सुरक्षाकर्मी, स्थानीय नागरिक, स्थानीय प्रशासन और भी कई अधिकारी जो है 24 घंटे तीर्थयात्रियों की सेवा में रहे और कोशिश यही थी कि सभी तीर्थयात्रियों की ये जो यात्रा है उसे यादगार बनाया जाए और वो यादगार लम्हे, वो यादगार पल जो है वो अपने साथ ले जाए। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, पहले दिन से लेकर अभी तक जो है मुसलसल प्रशासन, केंद्र प्रशासन, राज्य प्रशासन की यही कोशिश है कि सभी तीर्थयात्री जो छड़ी मुबारक के साथ इस वक्त पहलगाम की ओर रवा दवा है उन सभी के लिए जो है नेक ख्वाहिशात, नेक दुआएं साथ है। और प्रशासन की यही कोशिश है कि पहलगाम के प्राचीन मार्ग से ये जो यात्रा कल से प्रारंभ होगी, पहलगाम के प्राचीन मार्ग से यात्रा प्रारंभ होगी, मुख्तलिफ स्थानों पर जो है छड़ी मुबारक को रखा जाएगा, पंचतरणी, शेषनाग और उसके बाद जो है 22 अगस्त के रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जो है छड़ी मुबारक को जो है पवित्र गुफा पहुंचाया जाएगा। पवित्र गुफा में जो है छड़ी मुबारक को जो है शिव जी के कदमों में अर्पण किया जाएगा और उम्मीद यही है कि इस बीच जो है मौसम खुशगवार रहे और मौसमी सूरत हाल जो है उसमें बेहतरी रहे। शिव जी से यही प्रार्थना कि सभी तीर्थ यात्री, सभी लोग जो इस यात्रा से जुड़े हैं, शिव भक्त, संत और बाकी जो अधिकारी इस यात्रा के साथ जुड़े हैं, उनको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। यही

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के आराधना चैनल आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वीव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी छड़ी मुबारक का पवित्र सफ़र जो है कल से शुरू होगा। महंत दीपेंद्र डिग्री की अगुवाई में जो है छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा पहुंचाया जाएगा। पहलगाम के प्राचीन मार्ग से यात्रा प्रारंभ होती है, कई स्थानों पर जो है विश्राम रहता है, शेषनाग, पंचतरणी और पहलगाम की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच जो है पवित्र यात्रा है। 22 अगस्त को रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर अमरनाथ गुफा पहुंच जाती है। रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर यानी 22 अगस्त को छड़ी मुबारक पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी। इस पवित्र सफर में जो है साधु संत और बाकी शिव भक्त जो है जुड़े रहते हैं। कल से इस यात्रा का आध्यात्मिक तौर से प्रारंभ होगा। छड़ी मुबारक को पहलगाम की ओर ले जाया जाएगा। शिव जी से हमारी यही प्रार्थना कि सभी शिव भक्त को जो है प्रसन्न और खुश रखे, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी इस यात्रा से जुड़ी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग। विशेष प्रसारण आप FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स तथा आकाशवाणी की YouTube चैनल आराधना पर भी सुन पा रहे हैं। बने रहिए इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पहलगाम पर। आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz देश के विभिन्न भागों में, आप हमें DTH के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोता, आपको याद दिलाते चले, कल 22 अगस्त को छड़ी मुबारक का आध्यात्मिक तौर से प्रारंभ होगा। ये यात्रा कल से जो है पहलगाम की ओर रवाना की जाएगी। 22 अगस्त को रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर छड़ी मुबारक को जो है पवित्र गुफा पहुंचाया जाएगा। यात्रा से जुड़े सभी शिव भक्त, साधु संत, सभी के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना, इन सब की यात्रा सफल और सुखद रहे। और ईश्वर से यही प्रार्थना कि मौसमी सूरत हाल भी जो है वो ठीक रहे, मौसम खुशगवार रहे। श्रोता, आपको याद दिलाते चले, इस यात्रा का जो है पूरी यात्रा का कई एक जगहों पर विश्राम रहता है, कई एक जगहों पर पड़ाव रहता है। बात करें पहलगाम की, तो पहलगाम को जो है जब ये यात्रा पहुंच जाती है

पहलगाम से होते हुए चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचनदी से होते हुए जो है ये यात्रा पवित्र गुफा पहुंचाई जाती है। तो इस यात्रा का हर एक मुकाम जो है भगवान शिव के त्याग से जुड़ा है। कथा के मुताबिक जो है गुफा तक पहुंचने से पहले शिव जी ने अपनी हर प्रिय चीज़ का त्याग किया था। पहलगाम में उन्होंने अपने वाहन नंदी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं को, चंद्रमा को अलग किया, शेषनाग पर उन्होंने अपने गले के सांपों को छोड़ा और पंचतरणी में उन्होंने पांच तत्व का त्याग किया। यही वजह है कि इस रास्ते पर चलना ही अपने आप में मोहमाया का छोड़ने को बराबर माना जाता है। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा ये एक आस्था, विश्वास और त्याग का प्रतीक है। ये पवित्र जगह हमें याद दिलाती है कि आत्मा अमर है और शिव ही सत्य है। यात्रा से जुड़ी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़। देश के विभिन्न भागों में आप हमें डीटीएच के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 पूरी जोश और उत्साह के साथ जारी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो है छड़ी मुबारक की यात्रा। छड़ी मुबारक की यात्रा जो है शुरू हो चुकी है 22 अगस्त यानी कल से जो है इस यात्रा का जो है आध्यात्मिक तौर से प्रारंभ होगा। इस यात्रा से जुड़े साधु संत और बाकी शिव भक्त जो है इस यात्रा से जुड़े हुए हैं और यात्रा जो है पहलगाम की ओर रवा दवा है। पहलगाम तक के इस सफ़र में जो है कई जगहों पर यह जत्था जो है विश्राम करेगा। जैसा कि हम बता चुके हैं शेषनाग, पंचतरणी और भी कई एक मकामात जो है वहाँ पर जो है छड़ी मुबारक को पहुँचाया जाता है। इन सभी जगहों का जो है धार्मिक तौर पर एक महत्वपूर्ण है। पहलगाम में जो है शिवजी ने अपने नंदी को छोड़ा था, चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग किया था, शेषनाग पर उन्होंने अपनी नागू को छोड़ा था और पंचतरणी में उन्होंने पांच तत्वों का त्याग किया था। यही वजह है कि रास्ते पर चलना ही अपने आप में महमाया को छोड़ने के बराबर माना जाता है। श्रोतो, श्री अमरनाथ जी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो है अमर कथा। अमरनाथ गुफा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि अमर कथा जो है पुराणों के अनुसार जो है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमर होने का रहस्य पूछा तो शिव जी ने उन्हें इस परम ज्ञान को सुनाने के लिए इस जगह लाया था। वो नहीं चाहते थे कि इस कथा को जो है कोई और सुने, इसलिए इस गुफा को जो है अमरनाथ का नाम भी मिला। अमरनाथ यात्रा 2026 के क्षण क्षण की सूचनाएं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। छड़ी मुबारक का जो कारवा है कल से शुरू होगा, आध्यात्मिक तौर पर इसका प्रारंभ होगा, इससे भी जुड़ी क्षण क्षण की सूचनाएं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट

0: ट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओ, 5:32 हो चुके हैं, आइए अब आरती सुनते हैं।

आप सभी भक्तजन बाबा के पवित्र धाम में बैठे हैं। कहते हैं भोले बाबा स्तुतियों से भजनों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं, तो आप सभी भक्तजन आज भोले बाबा ने हमें अवसर दिया है तो दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए हंसते हुए मुस्कुराते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

0: बने की
1: जय,
0: धर्म के
1: जय हो,
0: धर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: मात पिता की
1: जय हो,
0: गुरु

శివ శంభో మంగళం భగవాన్ విష్ణు మంగళం గరుడ ధ్వజ మంగళం.

0: की
1: जय।
0: सभी भक्तजन आरती आपको बाहर गेट के मिलेगी। बोलिए शंकर भगवान की।
2: श्रोता, आप आरती सुन रहे थे। इसी के साथ आज के विशेष प्रसारण का वक्त समाप्त होता है। दीजिए अपने रेडियो सहयोगी जुबेर को अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

अर्थात चमकती तलवार थी जेमनो हस्त उज्ज्वल बन्यो छे ते उत्तम व्याघ्र पर बिराजेला दानवोना संहारक भगवती कात्यायनी सौनु कल्याण करो शुभ करो। आ माटे एक नानकड़ी कथा जोता ए इतिहास मळे छे के महिषासुर आदि दैत्यो अने देवोनु जारे युद्ध थयु देवो पराजित थया त्यारे सर्वदेवोए ब्रह्माजी ने अग्रेसर बनावी महादेवजी अने विष्णु ज्यां विराजमान हता त्यां गया पोतानुं आ दुःख देवोए जणाव्युं त्यां ब्रह्मा विष्णु

अर्थात हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंदरायना पुत्र श्री कृष्ण ने अमारा पति बनाओ, अमे तमने प्रणाम करीए छे। आ कात्यायनी नो संदर्भ श्रीमद भागवत में आवी रीते जोयो। मातंगी देवी, मातंगी

अर्थात ते अग्नि समान वर्ण वाला ज्ञान थी जड़हड़ता दीप्ति प्रकाशशाली कर्म फलनी प्राप्ति ना हेतु माटी सेवाता असुरों ना नाशक ये दुर्गा देवी ने अव प्रणाम करिए छे।

शरणागतनी पीड़ा हरनारा देवी आप प्रसन्न था। समस्त जगतनी माता आप प्रसन्न था। विश्वेश्वरी प्रसन्न था। हे महादेवी तमे चराचर जगतना स्वामीनी छो। विश्वनु रक्षण कर।

एक अध्याय नी देवी, हे देवी अनंत पराक्रम वाला आप वैषमी शक्ति छो, विश्वना कारण रूप आप मूल प्रकृति छो, अखा जगत ने आपे मोहित करी नाख्यू छे।

हे महादेवी, समस्त विद्याओ आपनु भिन्न भिन्न स्वरूप जगत में जेटली

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

भव भव जन भव भजन गुण भवन गुण अपन राम अपने राम

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।